0: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या
1: डिस्काउंट देंगे।

0: है
1: लाइका रेडियो. लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
1: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
2: टू बुक कॉल आवर लंदन office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears. Give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
4: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Get your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk. Radio Wally takes you on a journey of hit tracks every evening at 7 p.m. Leica.

0: This is Leica Radio.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाइए। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआइए। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए। नान हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कहे न कोए। गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाइया चार गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच नाही।

कोय। मन्ने सुध होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

कर कर वेखै सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोला खोवें, लख होवें लखवीस, लख

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल्ड 2 ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप laikaradio.com एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल्ड 2। बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90s सॉन्ग्स।

0: मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने. दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ मुकेश फ्रॉम द लवली मूवी आनंद. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है अबाउट दिस मूवी. सो ऋषिकेश मुखर्जी एक्चुअली वॉन्टेड टू कास्ट शशि कपूर एंड राज कपूर इंस्टेड ऑफ राजेश खन्ना एंड अमिताभ बच्चन फॉर दिस मूवी. हुआ यूं कि जनरली राज कपूर ऋषिकेश मुखर्जी को बाबू मोशाय बुलाते थे. यू नो दैट आइकॉनिक डायलॉग जो राजेश खन्ना कहते हैं बाबू मोशाय. वेल दैट वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय राज कपूर कॉलिंग ऋषिदा बाबू मोशाय. है ना, ये एक इंटरेस्टिंग सी बात. आई एम वीर इन फॉर द लवली काजल ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Leica Radio. This is Leica Radio across the Midlands.

0: Bollywood Flashback with Kajol.
1: So a lot of you have got the answer right, but कुछ लोग हैं who are still struggling. तो मैंने सोचा कि एक और dialogue मैं इस movie से play करता हूँ, and then let's see how many of you guys get this answer. तो चलिए, the dialogue is just coming up. And here we go. So brace yourself.
2: नहीं होता फांसी के तख्ते पर, उसके साथ उस फंदे पर दम तोड़ता है उसकी बीवी का सुहाग, उसके बच्चों का भविष्य, उसके घर में बसने वाली एक एक खुशी, उसके आंगन में उतरने वाली एक एक किरण, सबको एक साथ फांसी हो जाती है। ठगराल साहब ने 75 आदमियों को नहीं, 75 परिवारों को फांसी दिलवाई।
1: Well, I'm sure अब तो आपने guess कर लिया होगा. Then message me and tell me कि ये movie कौन सी है.
0: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Back to back hits across the Leica Radio network.

0: मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, व्हाट अ प्यारा वाला गाना। आई लव द लिरिक्स, इतनी ब्यूटिफुली ये गाने को लिखा गया है। जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, दिस सॉन्ग इज एक्चुअली सॉन्ग बाय वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स रफी साहब, एंड दिस सॉन्ग इज पिक्चराइज ऑन जीनत अमान, एंड आई थिंक ये गाना वो डिजर्व करती है बिकॉज शी इज गॉर्जियस। संजय खान ऑफकोर्स इज सिंगिंग प्रेजेस फॉर हर इन दिस सॉन्ग।
1: ये है लाइका रेडियो। New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
3: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
2: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
3: Also explore 2026 cruises.
2: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
5: Be part of a historic grand opening.
6: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
5: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
6: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
5: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
8: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
7: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
9: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
10: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ordinary.
1: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत ना मैंने करनी थी, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ रफी साहब एंड सुमन कल्याणपुर फ्रॉम द सुपरहिट मूवी फर्स्ट जितेंद्र एंड बबीता. आई एम श्योर जितेंद्र एट दैट टाइम वाज इंडियाज आंसर टू जेम्स बॉन्ड. एकदम ही यू नो लाइक सस्पेंसी मूवी थी कि क्या हो क्या रहा है टाइप्स. वन मोर लवली ट्रैक दिस आवर बट यू स्टे ट्यून्ड बिकॉज आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड.
1: This is Leica Radio across the Midlands.

0: चांद जैसे मुखड़े पे दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ आर आर्टिस्ट ऑफ द वीक येसुदास. दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी सावन को आने दो, अरुण गोविल एंड जरीना वहाब. दिस वॉज प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय राजश्री प्रोडक्शन.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Another lovely romantic track in the vocals of Rafi Sahab and Lata Mangeshkar from the movie Taj Mahal. Enjoy this Pyara Wala Gana on Like a Gold.

0: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए. दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड किशोर दा फ्रॉम द स्वीट मूवी सिलसिला. वेल द मूवी नॉट डू गुड ऑन बॉक्स ऑफिस, कहते हैं कि द मूवी वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, बट बहुत ही प्यारी वाली मूवी है. डायरेक्टेड बाई यश चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, रेखा, जया बच्चन, संजीव कुमार. इतनी ब्रिलियंट मल्टी स्टारर मूवी थी. एंड एक इंटरेस्टिंग बात अबाउट दिस मूवी, जितनी भी ज्वेलरी एंड यू नो द लवली साड़ीज दैट रेखा वॉज वेयरिंग, ये साड़ी उन्होंने खुद ही डिजाइन की थी. आई मीन शी इज सुपर क्रिएटिव एंड शी इज लुकिंग गॉर्जियस इन दिस मूवी, राइट?
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 128 Indian rupees, 371 Pakistani rupees, 450 Sri Lankan rupees, 165 Bangladeshi taka, 87 Afghani afghan, 173 Kenyan shilling and approximately 1.34 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Radio.
1: It's summer on the LIKA Radio Network.

Chen, this Pyara Wala Gana in the vocals of Kishore Da. What a lovely track, Rajesh Khanna and Tanuja. A super romantic Gana. One more track this hour or वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय. वेल, हमें राई प्यार के फिल्म मिलेंगे चलते चलते. गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू रवि शर्मा हूज अप नेक्स्ट. दिस इज लाइक

0: यस कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक पर ये गाना जब जब भूल खिले फिल्म से लिया था। और उससे पहले आपने सुना अपनापन फिल्म का गीत, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक था और जिसका कहना था कि सोमवार को हम मिले मंगलवार को नैन। हम तो पिछले संडे को मिले थे और एक बार फिर से आपकी और मेरी मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहले जो हमारा साथ दे रहे हैं उनको बताती चलूं कि ये है लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स एंड लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, और जहां पर ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही है सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। 10 से 1 आपके साथ रहूंगी और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल मजे में हैं और अब सबकी निगाहें वीकेंड की ओर लगी हुई हैं, क्योंकि अब वीकेंड आने वाला है। आज फ्राइडे हो गया, कल सैटरडे संडे, तो अब वीकेंड बिल्कुल भी दूर नहीं है। और मेरी आवाज सुनकर तो आपको ऑलरेडी एहसास होने लगा होगा कि वीकेंड आ गया। जी हाँ, बिल्कुल साथ देते रहिए, 1 बजे तक ऐसे ही गाने आपको सुनवाती रहूंगी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127.85 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी apply रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
5: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार Bollywood night के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert, featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: जतिन ललित के म्यूजिक पर 1997 की फिल्म खामोशी द म्यूजिकल से लिया था ये गाना, जिसमें मनीषा कोराला थी और साथ में थे सलमान खान. और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, जहां पर रितु शर्मा दे रही है आपका साथ, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी. गुड मॉर्निंग.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो भाई हमारे बहुत सारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं और मितुल पटेल आपका कहना है कि ये गाना बजाकर, खामोशी फिल्म का गीत बजाकर आपने तो मेरा दिन ही बना दिया. सच में ये गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में और इसमें कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, इस गाने का म्यूजिक, ट्यून, सब कुछ मैं कहूंगी नंबर वन है. सो ये गाना चलिए आपको डेडिकेट करते हैं. थैंक यू भैया गुनोवा जी, स्वागत है आपका, आप हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू मोशुमा, थैंक यू, कल आपसे मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा. कल दिनेश पोपट जी भी मिले और कल संध्या भावसर आपसे भी मिलने का मौका मिला और कल बहुत अच्छा लगा. बहुत ही शानदार नाइट थी रजवाड़ा जी की, रंजीत रजवाड़ा जी की, करूंगी उसके बारे में बात. लेकिन फिलहाल मौसुमा आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में. थैंक यू रोहित साथ देने के लिए. थैंक यू मीना लखानी जी, हाय गर्मी, यस आजकल यही हो रहा है और लग रहा है ये गर्मी, तुम कब जाओगी, बहुत दिन यहाँ रह ली, अब जाओ, है ना. ऐसा मन हो रहा है ना गर्मी से कहने का. एनीवेज स्वागत है आपका. किरण जी एरो से हमारे साथ है. जासू जी स्वागत है आपका, थैंक यू. थैंक यू प्रज्ञा सोलंकी, सत्यनारायण सैनी जी भारत से, सहर जी, महेंद्र बजारिया जी, थैंक यू. एंड थैंक यू राजेश जी कहते, अरे क्या बात है, आज तो मनोरंजन विद ऋतु शर्मा है. सही कहा आपने. और आज आपको लगेगा कि लॉन्ग वीकेंड शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों को मेरी आवाज से ही लगने लगता है कि वीकेंड की शुरुआत हो गई, और वैसे हो ही गई है, फ्राइडे तो है ही. तो चलिए आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू. थैंक यू अर्जुन जी एंड थैंक यू हमारे गिरीश जी भारत में प्रोग्राम सुन रहे हैं, एंड थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे एक बार फिर से मिलकर. तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, और आगे बढ़कर क्या करना है, सुन लेते हैं आज के प्रमुख समाचार.
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
0: तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर आ रही है भारत से. संसद में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए कड़ा कानून पारित किया गया है, और इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन जो है विधेयक 2026 भी संसद में पास हो गया है. मध्य प्रदेश के स्थित भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जुमे की नमाज परिसर से सटी दरगाह की जमीन पर अदा करने की व्यवस्था की गई है. भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, NCR, यूपी, बिहार और गुजरात समेत 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा को भी आज स्थगित कर दिया गया है. उधर महाराष्ट्र से खबर आ रही है. महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी में एक 4 मंजिला इमारत ढहने से हादसा हुआ है, जिसमें राहत और बचाव कार्य जारी है. कुछ समाचार सुनवाते हैं आपको विदेशों से, देश विदेश की खबरें. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के पूर्ण निशस्त्रीकरण को लेकर एक 20 सूत्रीय समझौते की घोषणा की है. उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कोयला खदान में मीथेन गैस के रिसाव से हुए धमाके में 32 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई है और कई अब भी वहां फंसे हुए हैं. पाकिस्तान स्थित ब्राड पीक पर्वत पर आए भीषण एवलांच, जो से कहा जाता है हिमस्खलन के बाद प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा समेत 10 पर्वतारोही के लापता होने की आशंका जताई जा रही है. आपको कुछ खेल समाचार सुनाते हैं. वेटलिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह ने 110 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है, और महिलाओं की डिस्कस थ्रो कंपटीशन में सीमा ने ब्रॉन्ज पदक अपने नाम किया है, और भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने अपने करियर को विराम देने की घोषणा की है, जिस पर BCCI और उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें शानदार करियर के लिए शुभकामनाएं दी हैं. यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए।
1: ये है Leica Radio Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: धुन बनाई है आरडी बर्मन ने और ये थी जे ओम प्रकाश की पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर। और ये फिल्म क्या हिट हुई, उसके बाद तो जे ओम प्रकाश ने अपनी सारी फिल्मों के नाम ए से ही शुरू किया, क्योंकि उन्हें लगा कि जब वो ए नाम अपनी फिल्म का रखेंगे तो फिल्म हिट हो जाएगी। और उनका ये फॉर्मूला काम भी किया, उन्होंने ज्यादातर जो फिल्में ए से बनाई हिट रही। पता नहीं क्या उनका विश्वास था, लेकिन ये काम जरूर करा। ये गाना आप सबने पसंद किया है, थैंक यू साथ देने के लिए। शेखर आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। थैंक यू मानसी जी, थैंक यू विजय गुनवा जी, आप हमारे साथ हैं, थैंक यू देने के लिए साथ। तोची जी थैंक यू, थैंक यू निर्मला जी, नरेंद्र पांचाल जी स्वागत है आपका। वियाना में अनिल सोनी जी हमारे साथ हैं, फरीदा गुलाम अली हमें सुन रही हैं, एंड प्रज्ञा भी हमारा साथ देने के लिए आ चुकी हैं। तो बस साथ यूं ही देते रहिए, क्योंकि एक बजे तक गीतों का सिलसिला ऋतु शर्मा के साथ यूं ही चलता रहेगा। गुड मॉर्निंग।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: तो आगे बढ़ने से पहले, अगला गीत सुनवाने से पहले आपको हम याद दिला दें कि भाई आजकल बहुत चर्चाएं हैं दिवाली स्टोरी की, और दिवाली स्टोरी का एक बड़ा ही गाना, प्यारा गाना है जिसका बड़ा लंबा इंतजार है, लक्ष्मी देवी सॉन्ग, जो हम आपको सुनवाएंगे कल सैटरडे को 11:30 लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन पर। अनुज राडिया जो 10 से 1 प्रोग्राम करते हैं, वो इस गाने को 11:30 बजाएंगे, तो आप जरूर सुनिए, आपको जरूर पसंद आएगा। और इस सॉन्ग को गाया है लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति, जिसमें म्यूजिक है राहुल रैनाडे का, और इन गीत को लिखा है समीर सामंत ने। दिवाली स्टोरी का सभी को इंतजार है। आपको बता दें कि स्टेज पर ये शो दिखाया जाएगा संडे 27 सितंबर को एट ओवो अरीना वैमली में, और आप टिकट्स खरीद सकते हैं एट diwalistory.com पर जाकर। टिकट खरीदने के लिए आपको जाना होगा diwalistory.com पर।
2: Like a radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और अगर हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथॉल ट्रैवल का नाम याद रखिए। दुबई के लिए बड़ी अच्छी डील्स चल रही हैं, उन्हें फोन कीजिए 02085748410 पर। इट ऑल प्रोटेक्टेड है सब कुछ, जल्दी कीजिए।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: ये है लाइका रेडियो।
4: लिस्ट अप, स्टॉक अप एंड सेव एट फाल्कन कैश एंड कैरी। फाल्कन चक्की आटा 10 kg 749, लैला मीडियम आटा 10 kg जस्ट 399, दिशा एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस 20 kg 24.99, हीरा बटर घी 2 kg 10.99 एंड फाल्कन पनीर बॉक्स 8.99। गेट फाल्कन केसर मैंगो पल्प फॉर 149, टाटा सॉल्ट फॉर 69p, किसान हॉट एंड स्पाइसी सॉस फॉर 99p एंड 2 फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg फॉर 399, मिडो योगर्ट 10 kg 899, करेला और लॉन्ग दूधी 299 पर किलो। ऑफर्स वैलिड फ्रॉम 6th जुलाई टू 2nd अगस्त एट फाल्कन कैश एंड कैरी, 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट, लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल, लिस्टर LE54UN.
5: Lester Miller is back.
6: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
5: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy and a proper celebration at the Abbey Park.
6: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
5: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
6: Arts Council England.

0: जी हाँ बिल्कुल, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये सुपर हिट गाना आपने सुना दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। और इस दीवाने की आवाज ने हजारों लोगों को तब भी दीवाना बनाया था और आज भी करोड़ों लोग इस आवाज के दीवाने हैं। मोहम्मद रफी साहब आज ही के दिन इस दुनिया को छोड़कर गए थे, 31 जुलाई 1980 में। सिर्फ 55 साल की उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बहुत ही दुख की बात थी, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि है और उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं जो मुझे याद दिला रहे हैं कि ऋतु आज रफी साहब की पुण्यतिथि है। यस, मैं जानती हूँ, ये गाना मेरी ओर से उनके सारे फैंस के नाम पर। और रफी साहब की तो आवाज़ ऐसी है, उनके गाने ऐसे हैं कि कोई भी शो किसी भी रेडियो स्टेशन पर पूरा हो ही नहीं सकता जब तक कि रफी साहब की आवाज़ में कोई गीत ना बजे। और हमारे यहाँ तो यही हाल है, उनकी आवाज़ के बिना कोई शो पूरा हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो लीजिए, रफी साहब को याद किया ये गाना सुनवाकर और ये गाना उनके सारे फैंस को भी डेडिकेट किया।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज जो 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: LEICA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 97.97 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
1: This is Leica Radio.
4: This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colors TV. खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी।
5: खतरों के खिलाड़ी।
6: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
7: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
6: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
7: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
6: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
7: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
6: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybon Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybon Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
9: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Dizzy twist.
10: Be sure to catch the show across the Midlands. The Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July. And at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
9: Click Rifko GoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
11: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedianath. With over 100 years of Ayurvedic legacy.
12: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
13: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
12: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
1: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
14: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie, results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
15: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
16: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
6: Order online at pujasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert, Pooja Sweets and Savories.
17: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 or visit Melton Road, LE4-5EA.
6: Pooja Sweets and Savories.
1: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Leica Radio.
18: अगर कोई मुझसे ये पूछे
19: क्या
18: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ
19: क्यों
18: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूं क्या
19: क्या

जी हाँ, आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। 11:04 हुए हैं और ये समय है चिंतन का। चिंतन यानी कि आज का विचार। अब देखिए, कल से अगस्त का महीना शुरू हो जाएगा और अगस्त का महीना हम सब जानते हैं आजादी का महीना है। अगस्त के महीने में ही भारत को आजादी मिली थी और इस आजादी को पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों। सबका देश एक ही था, भारत, हिंदुस्तान, और सभी सिर्फ एक मकसद लेकर आगे बढ़ रहे थे कि हिंदुस्तान को आजाद कराना है, भारत को आजाद कराना है। आज कुछ ऐसा ही किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूं, क्योंकि आज का दिन कुछ खास है। लेकिन आज के दिन के किस्से की शुरुआत करने से पहले जरूर आपके साथ चार लाइनें शेयर करूंगी कि किसी ने कितना खूबसूरत लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। इस ख्वाब को पूरा करने में हजारों लाखों लोगों ने हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगा दी। आज एक ऐसे ही इंसान को मैं याद करने जा रही हूं चिंतन में, क्योंकि आज का दिन उनकी शहादत का दिन है। आज पंजाब और हरियाणा समेत देश के बहुत सारे हिस्सों में स्वतंत्रता संग्राम के इस महान नायक की शहादत और बलिदान को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। और मैं बात कर रही हूं शहीद ऊधम सिंह जी की। आज का दिन महान क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह जी की शहादत का दिन है। उनके जीवन से जुड़ा एक किस्सा आज सुनाने वाली हूं चिंतन में। और ये जो किस्सा है शहीद ऊधम सिंह जी के जीवन से जुड़ा, केवल प्रतिशोध का नहीं,

बल्कि 21 साल के लंबे धैर्य, राष्ट्रभक्ति और उस अटूट कसम की कहानी है जिसने उस समय की पूरी ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। आप सबने जलियांवाला बाग के बारे में सुना होगा और उस खौफनाक रात के बारे में भी सुना होगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर ने निहत्थे मासूमों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, तब ऊधम सिंह करीब 20 साल के थे। जानते हैं, वे उस मैदान में लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। जब गोलियां थम गईं तो चारों तरफ लाशों का ढेर था। रोती बिलखती माताओं और बच्चों की चीखों के बीच ऊधम सिंह उस रक्त रंजित जमीन पर खड़े थे। उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी अपने हाथ में ली और उस समय वो मंजर देखकर उन्होंने एक कसम खाई। उन्होंने कसम खाई कि जब तक जलियांवाला बाग के इस नरसंहार के मुख्य गुनहगार माइकल ओ डायर को उसकी सजा नहीं दे देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हम जानते हैं कि बदला लेना आसान होता है अगर आवेश में तुरंत किया जाए, लेकिन ऊधम सिंह का संकल्प 21 साल तक ठंडा नहीं पड़ा। वो जानते थे कि पंजाब का जो तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर अब वापस लंदन चला गया है, 21 साल बाद भी उनके मन में वही गुस्सा था और उनका वही निर्णय था। और जब उन्हें पता चला कि जो माइकल ओ डायर, जिसने जालियांवाला हत्याकांड करवाया था, वो वापस लंदन चला गया है, और उनको पता था कि लंदन पहुंचना और वहां उस तक पहुंच बनाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, एक उस जमाने में एक आम भारतीय के लिए ये बिल्कुल एक नामुमकिन सा काम था। लेकिन शहीद ऊधम सिंह के मन में एक डिटर्मिनेशन था। उन्होंने सोच लिया था कि मैं बदला लेकर जरूर रहूंगा, और उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। ऊधम सिंह ने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा, एक ऐसा नाम जो भारत के हर धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख और देश की आजादी की सोच को एक साथ जोड़ता था। वो कारपेंटर बने, मैकेनिक बने, यूरोप के कई देशों में भटके, कई तरह की नौकरियां की और आखिरकार अफ्रीका के रास्ते लंदन पहुंचे। 21 सालों में उनके बाल भी सफेद हो गए थे, शरीर का ढांचा बदल गया था, लेकिन उस रात ली गई कसम का एक एक शब्द उनके दिल में जल रहा था। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग हो रही थी। माइकल ओ डायर मंच पर खड़ा होकर भाषण दे रहा था। ऊधम सिंह ने एक मोटी किताब के पन्नों को रिवाल्वर के आकार में काटकर अंदर अपनी पिस्तौल छिपा कर रखी थी। वो चुपचाप हॉल में घुसे और जब ओडायर अपना भाषण खत्म करके आगे बढ़ा तो ऊधम सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के पिस्तौल निकाली और सीधे दो गोलियां ओडायर के सीने में उतार दी। ओडायर वहीं ढेर हो गया और जलियांवाला बाग का न्याय 21 सालों के बाद पूरा हुआ। और सबसे भावुक बात यह है कि गोली चलाने के बाद कैक्सटन हॉल में भगदड़ मच गई। ऊधम सिंह चाहते तो भीड़ का फायदा उठाकर बड़ी आसानी से भाग सकते थे, लेकिन वो अपनी जगह पर शांत खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ ऊपर किए और मुस्कुराते हुए खुद को ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दिया। और जब अदालत में उनसे पूछा गया कि उन्होंने भागने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा, मैं भागने नहीं आया था, मैं दुनिया को ये बताने आया था कि भारत की आत्मा को तुम गोलियों से दबा नहीं सकते। मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मुझे फांसी का कोई डर नहीं। और आज ही के दिन
31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटोनविले जिले में शहीद उधम सिंह को फांसी दे दी गई। वो मुस्कुराते हुए फंदे पर झूल गए। उनके लिए ये काम करना बहुत कठिन था। शहीद उधम सिंह जो 20 साल की उम्र के थे, उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली, 21 साल तक एक एक शब्द उन्होंने अपने दिल में संजोए रखा। वो धीमे नहीं पड़े, वरना समय बीत जाने के बाद इंसान में प्रतिशोध की जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है। लेकिन शहीद उधम सिंह ने अपने लोगों को, बेकसूर लोगों को मरते हुए देखा था, और वो आग उनके दिल में कम होने की बजाय दिन पर दिन बढ़ रही थी। ये किस्सा बिल्कुल सच है, इतिहास में दर्ज है, और इस किस्से से हमें पता चलता है कि जब आपके मकसद में सच्चाई और देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम हो ना, तो समय चाहे कितना भी लग जाए, लक्ष्य हासिल होकर ही रहता है। उधम सिंह का जीवन धैर्य, साहस और अमर देशभक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है। आज उनकी शहादत का दिन है। चिंतन में आज उनकी बात ना की जाती तो शायद अच्छा नहीं होता, इसलिए सोचा क्यों ना उस महान शहीद को आज याद किया जाए, चिंतन में उनकी शहादत को सलाम किया जाए।

0: वतन ए वतन, चिंतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। और ये लाइनें बोलकर हजारों लोगों ने देश की खातिर अपने जान की बाजी लगा दी। और आज ही के दिन शहीद उधम सिंह को फांसी पर लटकाया गया था। शहीद उधम सिंह की जो ये कहानी थी, ये किस्सा था, वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब मैं ये बातें बता रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह से उनका 21 साल का धैर्य, अटूट संकल्प और देश के प्रति निष्ठा किसी को भी भावुक और प्रेरित कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये काम किसी अंधे गुस्से में नहीं, बल्कि बेहद शांत दिमाग, जिम्मेदारी और न्याय की भावना से किया था। वाकई में ऐसे लोग असल हीरो होते हैं। और आज के चिंतन में हमने शहीद उधम सिंह जी को याद किया। आपके बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। आपका भी कहना है कि यस, इमोशनल हो गए हैं, कुछ को रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। यस, यही होता है अपने देश के प्रति प्यार। जब हम किसी ऐसी बात को सुनते हैं, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, हम जुड़ जाते हैं। और वाकई में इस तरह की जब भी कोई कहानी, कथा, किस्से सुनते हैं तो दिल में एक ख्याल आता है कि उस जमाने में लोगों ने किस तरह से जीवन जिया होगा, कितनी मुश्किलातों का सामना किया होगा। हम तो सिर्फ सुनते ही हैं, उन लोगों ने इसे जिया होगा। मेरी ओर से उन सभी को सैल्यूट। और बस यही कहूंगी, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय हिंद। यही था आज का चिंतन। चलिए लौटते हैं बैक टू बैक गीतों की ओर, लेकिन उससे पहले थैंक यू कहना चाहती हूँ रानी जी स्लाव से, निर्मला जी, रंजन जी, प्रतिभा जी, महेंद्र बाजारिया जी, मंजू कामभी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। हिमांशु पटेल जी, फतेह पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। लीला बैन, थैंक यू फॉर द चिंतन, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, जरूर पढ़ूंगी। थैंक यू कहना चाहूंगी मैं परेश व्यास जी आपको, सहर जी, वियाना से अनिल सोनी जी, राजीव पटेल जी, जासू जी, महेंद्र पटेल जी क्रॉयडन से, अर्जुन जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। और इसके अलावा हरीश खत्री जी, जैस्मिन, विजय घुनोवा, राजकुमार मानसी जी, सपना एंड परेश व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आंटी जी एंड कुछ नाम है जिन पर नंबर, कुछ नंबर है जिन पर नाम नहीं है, सो थैंक यू साथ देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और माहौल को थोड़ा मस्ती भरा बनाते हैं। इस फ्राइडे सुनवाते हैं आपको ऐसा ही प्यार भरा, मस्ती भरा गाना।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज आपको देगा 127.85 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ट्रांसफर करवाना होगा via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A, Syston Street West, Leicester, LE1-2JU and 2A, Rollout Sale, Leicester, LE5-4UN. Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203 963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 pounds, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
7: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
8: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
7: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
8: Also explore 2026 cruises
7: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
9: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
10: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
11: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
12: Lester Miller is back.
13: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
12: H. Zami. Bringing the hits, the energy, and those proper live stage vibes.
13: Hosted by the team of Lyco Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
12: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
13: Arts Council England.
14: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-18 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
15: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
16: Like a Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
17: Leica Radio.
16: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: जी हाँ बिल्कुल, ये था लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में गीत जिसे आपने सुना आपके मनपसंद रेडियो से, जहाँ पर इस समय आपका साथ दे रही हूँ मैं, और मुझे कहते हैं ऋतु शर्मा। गुड मॉर्निंग
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो चलिए अगला गीत मैं आपको महेंद्र कपूर की आवाज में सुनवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको हम बताते चलें कि आप इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं विद सनातन इवेंट्स। 20% ऑफ आपको मिलेगा टिकट्स पर टू दिवाली स्टोरी अंटिल 15th अगस्त। यूज कीजिए कोड लाइका 20 अंडर द प्रमोशन कोड एट diwalistory.com। और आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं इस शो के लाइका रेडियो नेटवर्क। तो यानी कि बेसिकली 15 अगस्त तक अगर आप टिकट्स बुक कराते हैं दिवाली स्टोरी के, तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा जब आप यूज करेंगे कोड लाइका 20। तो जल्दी कीजिए, देर किस बात की है।
2: ये है Leica Radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: अगर इस तरह का सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक हो और महेंद्र कपूर की आवाज हो तो अंदाजा लगाना कठिन नहीं होता कि ये म्यूजिक पंडित रवि शंकर शर्मा का ही है, जो कि है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर। खूबसूरत गाना जिसे आप सभी ने पसंद किया, खास तौर पर हमारे महेंद्र बजारिया जी कहते हैं बहुत खूबसूरत गीत है। चलिए गीत मैं आपको डेडिकेट करती
1: हूँ। Happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो बहुत सारे साथी मुझे पिक्चर्स भेज रहे हैं कि कल रंजीत रजवाड़ा के शो में गए थे और बहुत मजा आया। यस, बहुत मजा आया, कल मैं भी वहां पर थी और उन्होंने क्या गाने चुन चुन कर गाए थे। सारे के सारे मेरे तो फेवरेट थे और मेरे साथ साथ आप सबके भी फेवरेट थे, क्योंकि जब वो गाने के लिए कह रहे थे बीच बीच में तो सभी उन गानों को बहुत ही अच्छी से और बहुत ही सुर में गा रहे थे, तो इससे पता चल रहा था कि वो गाने सबके फेवरेट हैं और सबको पता है और तभी तो सब अपनी फरमाइशें भी बता रहे थे। लेकिन उनका जो कलेक्शन था, चॉइस ऑफ सॉन्ग्स था, बहुत ही खूबसूरत था और बहुत मजा आ रहा था। बड़ी अच्छे से मजे के साथ, यू नो, हंसके मस्ती के साथ उन्होंने पूरा प्रोग्राम दिया, मजा था। कहते हैं पैसा वसूल शो था। और बहुत सारे साथियों से मिलने का मौका मिला। यस, हिमांशु पटेल जी, कल मैं थी वहां पर लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, कभी किसी और शो में मिलेंगे। लेकिन मुझे लग रहा था मेरे वहां बहुत सारे लिसनर हैं, बट वही बात है, वो पहचानते नहीं है कि मैं हूँ, मैं वही हूँ। मतलब आप मेरी आवाज तो जानते हैं लेकिन बाय फेस मुझे नहीं पहचानते हैं। और मुझे ऐसे कई बार लगता है कि अगर मैं एक बार कह दूं कि हाँ मैं ऋतु शर्मा हूँ, तो शायद बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे हम तो आपको सुनते हैं। ऐसा होता है, लेकिन कुछ साथी मुझे पहचान गए और वो बड़े खुश थे मुझे मिलकर, और मैं उनसे ज्यादा खुश थी उन्हें मिलकर। क्योंकि जब आप मैसेजेस भेजते हैं, अपना नाम बताते हैं और जब मुझे पता चलता है कि आप वही हैं, तो मुझे भी नाम को एक चेहरा मिल जाता है तो अच्छा लगता है। संध्या भाव सर, आप कितना मैसेजेस भेजती हैं, कल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और माशुमा जी, आपसे भी मिली मैं कल। दिनेश पोपट जी से तो मैं बहुत बार मिल चुकी हूँ, हमारे बहुत प्यारे लिसनर हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने खूब इंजॉय किया। और मेरे को म्यूजिक का शौक है तो उस तरह के शोज में मुझे जाना बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू आप सभी के अच्छे अच्छे मैसेजेस के लिए, और जिन्होंने वो फोटो मेरे साथ खींची हुई मुझे शेयर की है, थैंक यू। और मुझे जानकर अच्छा लग रहा है कि आपने भी इस शो को एंजॉय किया। तो इस तरह के शोज और उनकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं और देते रहेंगे, इसीलिए तो है हम। बस आप हमें सुनते रहिए ताकि कोई अच्छा सा प्रोग्राम मिस ना हो जाए, है ना।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा,
0: एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट। तो याद दिला दें आपको कि लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड ड्रॉप हो गया है पॉडकास्ट का, और इस बार का टाइटल है ऑनर बेस्ड अब्यूज, जिसे होस्ट किया है दीप राजा और खुश ने। तो आप हमेशा की तरह आपको याद दिला दें कि आप हमारा पॉडकास्ट लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर, अमेजन पर जाकर, एप्पल और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी जगह लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है।
2: लाइका एक्स्ट्रा, get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: ये है
4: लाइका रेडियो।
3: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
6: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
4: High appreciation.
8: In Dubai.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.

0: एसडी बर्मन के म्यूजिक पर चुपके चुपके फिल्म से था ये गाना, और इस गाने ने मुझे याद दिलाया है कि मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो मंडे आने वाला है उस मंडे को होगा सावन का पहला सोमवार, क्योंकि श्रावण का महीना शुरू हो गया है और ये महीना जो होता है शिव पूजा के खास दिन और रुद्राभिषेक का महीना होता है। कुछ को लोग इस पूरे महीने रुद्राभिषेक करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं और इस महीने का एक खास ही महत्व है। तो आपको बता दें कि सावन का महीना लग गया है और अगर आप भी व्रत उपवास रखती हैं सावन का, तो ये आपके लिए थी जानकारी। ब्यूटीफुल गाना जिसमें म्यूजिक था एसडी बर्मन का, और उससे पहले आज मौसम जरा बेईमान है और आज के मौसम के साथ ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि आज मौसम वाकई में बड़ा अच्छा है। काफी दिनों बाद ये हमें 25 टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, तो अच्छी बात है और चाहते हैं कि 2-3 डिग्री जरा और कम हो जाए। क्या कहते हैं आप, लग रहा है ना ऐसा? एनीवेज, दो बैक टू बैक गीतों के साथ आज के प्रोग्राम के इस लास्ट एंड फाइनल आवर की शुरुआत हो गई है, और जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताती चलूं कि मैं हूं ऋतु शर्मा, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी, और 1 बजे तक यही रहने वाली हूं आपके साथ। शेखर अरन जी, आपको मैसेज मिला है, कहते हैं वाह वाह वाह धर्म भाई का गाना। धर्मेंद्र के गाने कमाल के हैं और कमाल की फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। लेकिन आपने ये भी लिखा है कि आपको चिंतन बहुत अच्छा लगा, आप काफी इमोशनल भी हो गए, और आपने लिखा है कि जीवन लेना और देना परमात्मा के हाथ में होता है, लेकिन अब आपके लिए, आपके अंदर ऊधम सिंह जी के लिए और भी ज्यादा रेस्पेक्ट है। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने जो अपने मन में ठाना वो कर दिखाया। आपने लिखा है कि आपने फिल्म भी देखी है, लेकिन अब आपको फिल्म और अच्छी तरह से समझ आएगी, क्योंकि कुछ बातें जो आपको नहीं पता थी वो आज के चिंतन से आपको पता चल गई। जी हाँ, सरदार ऊधम सिंह फिल्म में विकी कौशल ने काम किया है, और विकी कौशल एक बहुत ही शानदार एक्टर है। तो फिल्म अगर आपने नहीं देखी हो तो देख भी सकते हैं, लेकिन आज चिंतन में हमने सरदार ऊधम सिंह को याद किया था, क्योंकि आज उनकी शहादत का दिन है और आज ही के दिन उन्हें फांसी पर लटकाया गया था। ये कहते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन यस, ऐसे ही वीरों को, और यही है देश के हीरो जिन्हें याद किया जाना चाहिए। सो थैंक यू आपके मैसेज के लिए। नैना शाह, बहुत धन्यवाद, आप साथ दे रही हैं। भारती जी, थैंक यू। मोहम्मद रफी साहब के गीतों को पसंद किया है हमारे गिरीश जी ने, बहुत धन्यवाद। एंड ऑफकोर्स जासू जी, संध्या बावसा, दिनेश पोपट जी, हमारे लिसनर्स जो हमेशा साथ देते हैं, आज भी साथ दे रहे हैं। और ये बात मुझे कब पता चलती है जानते हैं? जब आप अपना मैसेज भेजकर कहते हैं ऋतु शर्मा गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, तो आपको भी मेरा गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका इस शो में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 127.8 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
7: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
8: Location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedianath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
11: Siddhayu, now available at Deepak Foods Thornton Heath.

0: લોબસ્ટર નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
3: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
2: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
3: दिल तो टूट पे गया,
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
4: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
2: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394.
5: ये है लाइका गोल्ड

0: और इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक है येशुदास। लता जी और येशुदास की आवाज में था ये गाना।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: तो प्रज्ञा ये गाना आपको डेडिकेट करते हैं और आपके साथ साथ अगला गीत सुनाने से पहले मैं आपको याद दिलाती चलूं कि लाइका रेडियो इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th एंड 16th ऑफ अगस्त एट एबी पार्क। ऑल्सो जो बेडफोर्ड मेला हो रहा है 1st एंड 2nd अगस्त को सिटी पार्क एंड सेंटेनरी स्क्वायर पर, वहां आप जा सकते हैं एंड लाइका रेडियो इस मेले के भी एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं।

0: और राजेश रोशन के म्यूजिक पर था ये गाना मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। खुदगर्ज फिल्म से लिया था। आपको बता दें कि वैसे तो खुदगर्ज फिल्म के जो हीरो थे वो थे जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और भानुप्रिया, लेकिन जब भी मुझे खुदगर्ज फिल्म याद आती है तो मुझे लगता है जैसे गोविंदा और नीलम ही इस फिल्म के हीरो हीरोइन थे जबकि फिल्म के हीरो हीरोइन कोई और थे। लेकिन ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ था कि आजकल या बहुत सारे लोगों को लगता है कि खुदगर्ज फिल्म के मेन हीरो यही दो थे मेरी तरह।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो परविंदर मथारू आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका इस शो में। नैना शाह, कितनी देर से आप परेशान हो रही हैं, कोई गाने बता रही हैं आप। मैं देखती हूँ अगर मेरे सिस्टम में हुए तो जरूर आने वाले शोज में उन गीतों को बजाने की कोशिश करूंगी, और अगर नहीं हुए तो आपके लिए सिस्टम में हम डलवाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारी बहुत प्यारी लिसनर है और अक्सर ही लिसनर्स कुछ गानों की फरमाइशें करते रहते हैं, लेकिन बताती चलूं कि ये प्रोग्राम रिक्वेस्ट शो तो नहीं होता है, हमारा ऑलरेडी सब कुछ टाइमिंग के हिसाब से सेट होता है, और एक भी गाने को इधर उधर करना मतलब सारा प्रोग्राम रीशेड्यूल करना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम जब आप कहते हैं रिक्वेस्ट लगा दो, कई बार नहीं लगा पाते हैं, सो इसके लिए मैं आपको पहले से ये बता रही हूँ। एनीवेज, एक और बहुत खूबसूरत गीत आने वाला है और चलिए सुनवाती हूँ वो गाना।
1: ये है लाइका रेडियो।
3: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
4: Hmm?

0: visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल protected.
3: Birmingham Hodge Hill, this is not a drill. Pepe's is now open at 606 to 608 Bromford Lane. Get your chicken rice, chicken XL, flame grilled wings, strips, burgers, burritos and banging salads, all packed with Pepperlicious flavour. Birmingham, come and get it.
4: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
5: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: देखो हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी,
0: अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार।
1: तो अगले इतवार
0: जी सरकार।

0: Yes, we are remembering none other than Muhammad Rafi Sahab today. Rafi Sahab ki punya tithi par unhe bhavbhini shraddhanjali. Main hoon Bali Brahmbhatt on Leica Gold with Gold Afternoons. Available on 1035 medium wave DAB Alexa, Google Home and LeicaGold.com. Also available on Radio Player app. And a big hello to everyone in the Midlands. 388th day of Leica Radio Midlands. 1 se 4 baje tak main aapka saath nibhaunga. Aap mera saath nibhaiyega. Sandy Shah will come for drive time after 4 o'clock. And it's going to be Annika in place of Raj Baddanji. Maine bahut socha Rafi saab ko kaise main present karun aapke samne. Every presenter comes and says he was born on 24th of July 1924. He passed away on 31st of July 1980. He was active for 35 years from 1945 to 1980. 4,425 songs, 328 non-filmy, 310 non-Hindi. And his last song was Sham Phir Kyun Udaas Hai Dost. Abhi, obviously, kitne bachche the, bachche hain, kitni biviyan, ye sab to, you know, common statistics में आ जाता है. लेकिन मैंने सोचा जितनी बातें कम करूंगा उतने गाने ज्यादा सुना सकूंगा मैं. तो मैंने सोचा कि नोटिस करता हूं कि कितने हीरोज, वैसे तो 50 हीरोज होंगे लेकिन जो मैंने कलेक्ट किए वर 23 हीरोज एंड 3 कॉमेडियंस. ऑल टुगेदर 23 हीरोज विद वन वॉइस, मोहम्मद रफी. बिलीव यू मी, towards the end of the 3 hours, आप रो पड़ेंगे. एक आवाज इन सब हीरोज के लिए इन्होंने गाया और दिल खोल के गाया. And he manipulated his voice according to the hero he was singing for. क्या differences है, क्या changes है आप महसूस करते जाएंगे. जैसे कि मैंने A से अमिताभ बच्चन फिल्म अभिमान का गाना आपको बताया. I got a message saying he sounds a bit different here because he's singing from Amitabh Bachchan. Bharat Bhushan ji ke liye gaya, to again he was the young Rafi singing for Bharat Bhushan. Aise to gaane dekho to Tu Ganga Ki Mauj Mein Jamna Kinara. मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन विद लॉन्ग सॉन्ग्स. लेकिन मैंने छोटे छोटे गाने चूज किए हैं सबके ताकि मैं ज्यादा गाने डाल सकूं. बिश्वजीत विल बी नेक्स्ट ऑनलाइन एंड देन इट्स गोना बी दारा सिंह, दिलीप कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र फ्रॉम डी, एफ से फिरोज खान, जी से गुरुदत्त, जे से जितेंद्रा, जे से जॉय मुखर्जी, फिर दो कॉमेडियंस जॉनी वॉकर और जगदीप अगर टाइम मिला तो, के फॉर किशोर कुमार व्हेन ही वाज एक्टिंग एंड रफी साहब वाज सिंगिंग फॉर हिम, फिर एम से होता है महमूद, अगेन अ कॉमेडियन वक्त मिला तो, आर से राजेंद्र कुमार, राज कपूर, राजेश खन्ना, राजकुमार, ऋषि कपूर, एस से तो बहुत सारे, संजीव कुमार, शम्मी कपूर, शशि कपूर, सुनील दत्त, सुदेश कुमार, संजय खान, ये सब. सो दे आर 23 हीरोज एंड वन वॉइस ऑल द 3 hours. लेट्स गेट ऑन विद इट, शैल वी? एंड लेट मी नो ऑन 07424232323 पे आपको कैसा लगा.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to £127.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
1: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
2: List up, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Lela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 399. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry. 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A Rollout Hill, Leicester, LE5 4UN. Start

0: Rafi Saab singing for Dharmendra. 114 songs he sang for Dharamji.
1: This is Leica Radio across the Midlands.
0: Firoz Khan ke liye Rafi Saab ne gaya. 23 heroes, one voice.
2: अरे अपनी चाह का मेरी निगाह का
0: ए टू जेड अभी एफ पे आ गए हम.
2: सलाम लो मेम साहब सलाम सलाम मेम साहब सलाम

रफी साहब सिंग्स फॉर गुरुदत्त। ए टू जेड अब जी पे आए हम। 23 हीरोज वन वॉइस। दिस इज गुरुदत्त फ्रॉम जी।

0: वाह वाह वाह, दीज सॉन्ग्स, मैं खो जाता हूँ कोई और दुनिया में. एंड वी आर डूइंग मोहम्मद रफ़ी साहब ऑन इस 46th डेथ एनिवर्सरी. मैं बातें कम करता हूँ क्योंकि गाने इतने सारे डालने हैं. ए टू जेड मैंने सब हीरोज को चुना और सब ए टू जेड हीरोज को लेकर मैंने एक वॉइस को डाला, दैट इज मोहम्मद रफ़ी साहब. ए से मैंने अमिताभ बच्चन, बी से भारत भूषण, बी से विश्वजीत, डी से दारा सिंह, दिलीप कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र, एफ से फिरोज खान, जी से गुरुदत्त. दैट वॉज द फर्स्ट आवर. सेकेंड आवर में अब तक जितेंद्र के लिए 100 गाने गाए थे रफ़ी साहब ने. फॉर जॉय मुखर्जी 68 सॉन्ग्स. एंड द नेक्स्ट कम्स किशोर कुमार. जी हाँ, किशोर कुमार जब स्क्रीन पे एक्टिंग करते थे तो कितने गाने रफ़ी साहब ने प्लेबैक में गाए थे. एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ आज, हर हीरो के लिए एक गाना. सो ए टू जेड वी आर डूइंग 23 हीरोज एंड वन सॉन्ग पर हीरो विद वन वॉइस, रफ़ी साहब. मतलब ये 23 गानों को मैं तैयार करते करते मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे. हाउ कैन अ मैन मैनिपुलेट हिज वॉइस पर हीरो, अलग अलग आवाजों में, अलग अलग स्टाइल में, गिविंग हिज हार्ट आउट टू एवरी हीरो ही सैंग फॉर. मैंने राजेंद्र कुमार जी को चुना है आर से, राज कपूर, राजेश खन्ना, राजकुमार, ऋषि कपूर. एस से हम खत्म करेंगे शो, संजीव कुमार, शम्मी कपूर, शशि कपूर, सुनील दत्त, सुदेश कुमार एंड संजय खान. लेट्स सी हाउ इट गोज. आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर इट अप इन 3 hours. मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स, रिमेम्बरिंग रफ़ी साहब ऑन लाइक अ गोल्ड विद माई शो गोल्ड आफ्टरनून्स, स्पॉन्सर्ड बाय जयमिन.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you 127.85 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons.
3: Gold Afternoons.
2: Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
6: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
7: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
8: Live on Sunday the 1st of November.
10: Nimura, Nimura, Nimura.
8: An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
12: Location, location.
3: location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
10: In

0: There you go, Rajendra Kumar. Rafi Saab singing for Rajendra Kumar.
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.
2: ये है Like a Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208 574 8410. At all protected.

0: Basmati Rice.
1: Disha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
2: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
5: पंजाब दी बिगेस्ट ट्यून्स.

0: at the Golga Pyanda Pani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
3: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
2: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
3: दिल तो टूट पे किया।
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
4: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
2: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
5: ये है लाइका गोल्ड

0: Loving that. Or do you think it is going to be my twin with this one? Okay, so let me play that one again. It sounds like this. Okay, so you've got Sanju Rathod, you've got Arijit Singh and Jasmine Sanlis, who are fighting for number one place. I want you to message me and tell me who you think is going to be number one, and I'll see you after the messages.
1: Annika, counting down the biggest top 10 songs of the week. This is the Leica Radio Chart Show. Drive is sponsored by Pepe's. With over 260 stores, you're sure to find one near you. Fresh flame-grilled chicken with six tasty flavours. It's Pepe-licious.
2: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg. For $3.99. Mido yogurt 10 kg, $8.99. Karela or long dudi, $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Lister, LE12JU, and 2A Rollout Sill, Lister, LE54UN.
3: Lester Mella is back.
4: And the stage is about to explode. Confirmed artist
3: Lember Hussein Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
4: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
3: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
4: Arts Council England.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
8: फोन 020-8574-8410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 020-8574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
11: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
10: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
1: Leica Radio Network प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
2: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा। और
4: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
5: ऑर्डर ऑनलाइन एट poojasweets.com। फ्रॉम बर्फी, लड्डूज, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया, फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
6: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA।
5: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
0: नेक्स्ट रेडियो वाली'स रोलर कोस्टर विद रेडियो वाली ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स नंबर 2।

होने लगी, एक रात में हिला उसे होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है। कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पीएस के जो घूटों से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी। मैं कभी बहुत ज्यादा सैड, कभी बहुत ही फनी, मेरे गोयाट के बैग कानों में टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी, पीओ की टिप्पणी पे ना करू टिप्पणी, तेरे जैसे कहां से मैं आंट तो, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी चलता है उसकी सरता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, 3 रात लगातार मैं जागता फिरूं, के साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है, मैं नाचता फिरूं।

डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।